आदरणीय तरंगा, हृदय परिपूर्ण असंपूर्ण गहनिया, परिपूर्ण गहनुंट आदरे विंदी है किया, असंपूर्ण गहनुंट आदरे विंदी न है किया। नववेनी वालाकुला से आदरे क्यों गहन परिपूर्ण विय, नमोत पालमु वालाकुलवत नो देख के गहन असंपूर्ण विय। मम परिपूर्ण असंपूर्ण गहनिया क्विय, एदा मानु बिट आदरे किया मुलीन में पैवसु है, अपे देदना ला दुब्रपाट के अनमसे अकमते सिटी नवित दिया। එදායි දුම්බුරු දුටුමට ඒ හැටි තවමත් මතකය. නමුත් මට එදා මතක් වුණේ නැත. ඒ කැන්වසේ තිබුණේ මැකෙන්නට නියමිතව තිබූ පැන්සල් පාරක් බව. ඉතින් කෙසේ මතකද ඒද ආදරේ කියෝ මුල් දවස්? ආදරේ නොකියෝ තිබෙව්‍යට ආදරෙන් වලාකුළු ආදරවන්තියගෙන්

लंगकट जीवत वे नहीं तो ना कवि कट जीवित है मैं वना इत अनसतु कवियक आया ले न हो लंगक कोमना त्रवेन न दा कोमना त्रवेन न दा ममत्ते हो बत्ते हो पावला अन्न मोने पावला अन्न बै කවිය මගේ කරගන්නත් ඕනේ එහෙමත් බෑ මොකද කරන්නේ